कोई। बोलना जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरों श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी। पंजा प्यारिया चौहान साहबजादियाँ चालिया मुक्तियाँ हठियाँ जपियाँ तपियाँ जिन्ना ने नाम जपया वंड के छकिया देग चलाई तेग वाही देख सुन के अनडिठ कीता तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान तर बोलो जी। जिन्ना सिंघा सिंघणियाँ ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपरियाँ लुहाइयाँ चरखड़ियाँ ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारियाँ दी सेवा लई कुर्बानियाँ कीतियाँ धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुवासा नाल निभाही तिना प्यारियाँ सचियारियाँ समूह शहीद सिंह।

लोहे दे कोट दे नाल मड़िया पिया सी, सतगुरे दे खंडे दा वार हुया अते चीरदा हुया खंडा, उदे शरीर नू चीर गया, डिग पिया कावली वीग, फौज दे विच भाजड़ पै गई, 35,000 चढ़ के आए सी पर सौवां दी गिणती दे विच ही बची। जिहड़ा हसन खां सी महाराज ने आख्या सी, हसन खां घबरा ना, लाहौर दी सूबेदारी तैनू ही मिलनी, इकट्ठी फौज करके जदों जाके बादशाह दे अगे पेश होया ते उहने उस नू जदी काबल वल घल दिता अते लला वेग दी जगह ते उहनू सूबेदार बना दिता गया। इधर सतगुरु महाराज ने सिंघां दा पंथ प्रकाश ज्ञानी ज्ञान सिंह जी तवारीख गुरु खालसा दे विच जो जिक्र करते ने 1276 के लगभग जिहड़े सिंह सी शहादत का जाम पी गए उन्हां दा संस्कार किया, जिहड़े इस्लाम नूं मन्नण वाले सन, बहुत वड्डा एक टोआ पुट के उन्हां दीआं लाशां नूं उहदे विच दफनाया गया। अते अज उस अस्थाना ते साडे अस्थान ने गुरु के प्यारियो अते गुरु प्यारियां गुरसिख संगतां जांदियां ने, उत्थे नतमस्तक हुंदियां ने। इह तीसरा जंग जो माघ दे महीने सतगुरु मीरी पीरी दे मालक ने मालवे दी धरती ते लड़िया अते सूरमियां नूं सरोपाउ दिते गए, जिन्हां ने जान तली ते धर के भावें शरीर जख्मी हुए सी उन्हां दी मलम पट्टी हुई है। इह जंग दे विच पेंदे खां नूं नहीं सी बुलाया सतगुरां ने। आओ सारी संगत दा धन्नवाद, गुरु महाराज साहब दीआं हाजरियां प्रवान करे आनंद साहब दा पाठ, अरदास बेनती च जुड़िए जी। आओ रल मिल के आनंद साहब दा पाठ करिए। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।

सदा सलामत निरंकार संख जप संख भाव असंख पूजा संत बताओ संघ ग्रंथ मुखमेद पाठ संघ जो मन नहीं उदास असंख भगत गुणगान विचार संघ सदिया संघातार असंघ सूरम पख।

सर्ग है, अनिल है, नाद है, अजय है, अजाद है, जन्म है, मरण है, भूत है, मरण है, अगंज है, पंज है, अगंज है, पंज

अनास है प्रकाश है चिंत है सुमिंद है लिख है दिख है लेख है पीख है अटा है गा है

हर नरिया खंड बर नरिया मंडव अनुभव अनास मन मन प्रकाश गुण गण बरना जल थल मुदाम अनशेजी अंग आसन आपंग उपमा अपार गात्मित उदार जल थल या मंड देसवे अपंड जल थल महंता देसवे सभियंता

करुणाले हैं अरकाले हैं, खल खंडन है मह मंडन है, जगतेश्वर है परमेश्वर है, कल कारण है सर्व बारण है, त्रित के तरण है जाग के करण है, मनमानिय है जग जानिय है, सर्वं पर है सर्वं कर है, सर्वभाषीय है सर्वनाशीय है, करुणाकार है विश्वंबर है सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है, पारते पार है करुणाकार है, अजपा जाप है अथपा थप है,

0: पक्की सारी है, जो आया सो चल से सबको आई वारी है। जिसके जी प्राण को सामने विसारी है, अपन ती अपना आपे ही काज सवारी है, आपे ही काज सवारी है।
1: आसा महला चौथा

0: जाप ताप ज्ञान सब ध्यान योग अभ्यास कर्म तर्म किरिया अनेक प्रकार की ये बहु जतना शरीर कटाए हो में कर राती
1: करे वो पाती
0: नहीं तुल राम नाम विचार
1: नानक गुरमुख नाम जपिए
0: नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे
1: महा उदास पीसर थीवे
0: अगन माहे होमत प्राण
1: गन का सब है भरपूर दान
0: न्योली कर्म करे बहु आसन
1: जय मार्ग संयम सार
0: निमक निमक कर शरीर कटावे
1: तो भी हो मैं मैल न जावे
0: हर के नाम सम शुर कछ नाही
1: नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहि
0: मन कामना तीर्थ दे छूटे
1: गर्व कमाना मन ते हुटे
0: सोच करे दिन से अर रात
1: मन की मैल न तनते जात
0: इस देही को बहु साधना करे
1: मन ते कहू न बिखिया डरे
0: जल तो वह बहु दे अनहित
1: शुद्ध कहाँ होए काची पीत
0: मन हर के नाम की महिमा ऊच
1: नानक नाम उदरे पतत बहुमूच
0: बहुत स्याणप जम कह पौ व्यापे
1: अनेक जतन कर तृष्णा त्रापे
0: पेख अनेक अगन नहीं बुझे
1: कोट पाल दल गए नहीं सीजे
0: छूट स्नाही उब पयाल
1: मोहे व्यापे माया जाल
0: अवर कर तूत सगली जम डाने
1: गोविंद भजन बिल तल नहीं माने
0: हर का नाम जपत दुख जाए
1: नानक बोले सहज सबाए
0: चार पदार्थ जे को मांगे
1: साधना की सेवा लागे
0: जे को अपना दुख मिटावे
1: हर हर नाम हृदय सदगावे
0: जे को अपनी शोभा लोरे
1: साध संगे हो मैं शोरे
0: जे को जन्म मरण ते डरे
1: साधना की सरनी परे
0: जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा
1: नानक ताके बल बल जासा
0: सगल पुरख में पुरख प्रधान
1: साध संग जाका मिटे अभिमान
0: आपस को जो जाने नीचा
1: सो गनिये सबते ऊंचा
0: जाका मन होए सगल की रीना
1: हर हर नाते कट कट चीना
0: माने अपने ते बुरा मिटाना
1: देखे सगल श्रेष्ठ साजना
0: सुख दुख जम सम दृष्टिता
1: नानक पाप पुण्य नहीं लेपा
0: निर्तन को तन तेरो नाओ
1: नावे को नाव तेरा थाओ
0: निमाने को प्रभ तेरो मान
1: सगल कटाको देवो दान
0: कर्ण करावण हार स्वामी
1: सगल कटाके अंतर्यामी
0: अपनी गत मित जानो आपे
1: आपन संग आप प्रभ राते
0: तुमरी उस्तत तुम ते होए
1: नानक अवर्ण जान सकोए
0: सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म
1: हर को नाम जप निर्मल कर्म
0: सगल किरिया में उत्तम किरिया
1: साध संग दुर्मत मल हिरिया
0: सगल उद्यम में उद्यम पला
1: हर का नाम जपो जी सदा
0: सगल बानी में अमृत बानी
1: हर को

0: प्रसाद आपूखन पहरीजै।
1: मंत्र सिमरत को आलस कीजै।
0: जय प्रसाद असब अस्त असवारी।
1: मंत्र प्रभु को कभू ना बिसारी।
0: जय प्रसाद बाग मेलक तना।
1: राख ब्रोए प्रभु

0: सकल की रीना
1: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया
1: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
1: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टा व्रत वासी
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
0: ब्रह्म

0: सदा सद जागत
1: राम ज्ञानी अमृत त्यागत
0: राम ज्ञानी के मन परमानंद
1: राम ज्ञानी के कर सदा आनंद
0: राम ज्ञानी सुख सहज निवास
1: नानक राम ज्ञानी का नहीं विनाश
0: राम ज्ञानी ब्रह्म का बेता
1: राम ज्ञानी एक संग हेता
0: राम ज्ञानी के होय चिंत
1: राम ज्ञानी का निर्मल मंत
0: राम ज्ञानी जिस करे प्रभ आप
1: राम ज्ञानी का बड़ प्रताप
0: राम ज्ञानी का दर्श बट भागी पाइये
1: राम ज्ञानी को बल भग जाइये
0: राम ज्ञानी को खोजे महेश्वर
1: नानक राम ज्ञानी आ परमेश्वर
0: राम ज्ञानी की कीमत नाहे
1: राम ज्ञानी के सगल मन माहे
0: राम ज्ञानी का कौन जाने भेद
1: राम ज्ञानी को सदा आदेश
0: राम ज्ञानी का कथिया न जाए दे आखर
1: राम ज्ञानी सर्व का

0: सब सृष्टि का करता
1: ब्रह्म ज्ञानी सब जीवे नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
1: ब्रह्म ज्ञानी

0: लगना
1: नानक करते की जाने करता रचना
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी
1: कई कोट राजे रस भोगी
0: कई कोट पंखी सर्प पाए
1: कई कोट पाथर वृक्ष निकलाए
0: कोट पवन पानी बह संतर
1: कई कोट देश को मंडल
0: कई कोट शशिर सूर नक्षत्र
1: कई कोट देव दान इंद्र सिर शतर
0: सुमगरी अपने सूत तारे
1: नानक जिस पावे तिस तिस संसार
0: कई कोट राजस तामस सातक
1: कई कोट वेद प्राण सिमरता शास्त्र
0: कई कोट किए रत्न समुंदर
1: कई कोट नाना प्रकार जंत
0: कई कोट किए चिर जीवे
1: कई कोट दिली में स्वर दीवे
0: कई कोट जखे किनक पिसाच
1: कई कोट कूत प्रेत सुकर मेगाच
0: सब ते नेरे सब ते दूर
1: नानक आप पटिया भरपूर
0: कई कोट पाताल के वासी
1: कई कोट नर्क स्वर्ग नवासी
0: कई कोट जन्म

0: अहंकार
1: नरक स्वर्ग फिर फेरे अवतार
0: जतन कर आत्म नहीं द्रवे
1: को कैसे गवे
0: वापस को जो पला कहावे
1: जिसे पलाई आवे
0: सर्व की रेन जा का मन होए
1: और नानक ताकी निर्मल सोए
0: जब लग जाने मुझसे कुछ होए
1: तब इसको सुख नाही कोए
0: जब जाने मैं कुछ करता
1: तब लग गर्भ जोन में फिरता
0: जब तारे को बैरी मीत
1: तब लग नेचर नाही चीत
0: लग मोह मगन संग माहे
1: तब लग धर्म राय देश जाए
0: प्रभु कृपा ते बंधन टूटे
1: और प्रसाद नानक हो छूटे
0: सहस फटेला को उठतावे
1: आवे माया पाछे पावे
0: के करे
1: नावे खप खप भरे
0: बिना संतोख नहीं को राजे
1: सुपन मनोरथ बिथे सब काजे
0: राम रंग सर्व सुख होए
1: बड़भागी किसे प्राप्त होए
0: नानक रावण आपे आप
1: सदा सदा नानक हर जाप
0: नानक रावण करणे हार
1: इसके हाथ कहाँ विचार
0: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
1: आपे आप आप प्रभ सोए
0: कीनो सो अपने रंग
1: सब ते दूर सब के संग
0: जे देखे करे विवेक
1: आपे एक आपे अनेक
0: इन बिन से आवे ना जाए
1: नानक सदी रहा समाए
0: आप उपदेशे समझे आप
1: आपे रचिया सब के साथ
0: कीनो अपन विस्तार
1: सब कुछ उसका करने हार

0: सोदत सोदत सीजिया
1: गुरु प्रसाद तन सब बुझिया
0: जा देखो तब सक शमूल
1: नानक सो सुखम सोई अस्थूल
0: नाके जन्मे नाक शमरे
1: आपन चलता आप ही करे
0: आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट।

0: दंडन हार गोपाल
1: सर्मिया के प्रतपाल
0: कहता जस मन माहे
1: जिससे बेता कोई नाहे
0: मन मेरे सदा हर जाप
1: अवनासी प्रव्यापे आप
0: अपन किया कछु न होए
1: जेसो प्राणी लोचे कोए
0: जिसमें नाही तेरे कछ काम
1: रत नानक जापे कह नाम
0: बंत होए नाही मोह
1: प्राप्ति जो सगल कट सो है
0: बंता होए क्या को घर में
1: जा सब कुछ तिसका दिया दर है
0: सूरजे को कहा वै
1: रब की कला बिना कहता वै
0: को होए बह दातार
1: जिस देन हार जाने का वार
0: और प्रसाद टूटे हो रोग
1: नानक सोजन सदा रोग
0: अंदर को थम में थमन
1: देव गुर का शब्द बने अस्थमन
0: खान नाव चढ़ तर
1: प्राणी गुर चरण लग्न निस्तर
0: जो अंधकार दीपक प्रकाश
1: दर्शन देख मन होए विलास
0: उद्यान में मार्ग पावे
1: जो साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे
0: तन की बाछो तूर
1: नानक की हर लोचा पूर
0: मूर्ख काहे बल लावे
1: और लिखे का विद्या पाइये
0: सुख प्रभ देवन हार
1: अवर त्याग तू किसे चितार
0: कुछ करे सोई सुख मान
1: उला काहे फिरे अजान
0: मस्त आई तेरे संग
1: लाट रेओ रस लोभी पतंग
0: नाम जप हृदय माहे
1: नानक पासे ती कर जाहे
0: पखर को लैन तू आया
1: राम नाम संतन कर पाया
0: मान ले हो मन मोल
1: राम नाम हृदय में तोल
0: आद पेख संता संग चाल
1: अवर त्याग लिखिया जंजाल
0: तन तन कहे सब कोए
1: मुकुल जल हर गए सोए
0: हो बापार बिरला बापारे
1: नानक ताके सद भले हारे
0: तन साध के तोय तोय पियो
1: हर प्रसाद को अपना जियो
0: की दूर करो इस नान
1: साधु पर जाइए करवान
0: साध सेवा बड़ पागी पाइये
1: साध संग हर कीर्तन गाइये
0: विघ्न ते साधु रखे
1: हर गुण गाए अमर रस चाखे
0: कहे संता दर आया
1: सर्व सुख नानक तै पाया
0: मृतक को जीवालन हार

0: की दृष्टि माहे
1: और मृदे का लहना पाए
0: सब किछ तिसका ओ करने जोग
1: जिसमें दूसर हुआ न होग
0: जन सदा सदा दिन रहनी
1: सबते ऊच निर्मले करनी
0: कृपा जिसको नाम दिया
1: नानक सो जन निर्मल दिया
0: के मन गुर की प्रतीत
1: जिस जन आवे हर प्रचीत
0: भक्त सुनिए तह लोए
1: जाके हृदय को
0: करनी सच ताकि रहत

0: चैतन्य सुख पाया
1: नानक निष्कुरता के अंत न पाया
0: लीला की मितना है
1: सदन देव हारे अवतारे
0: पिता का जन्म की जान

0: कुछ दिया,
1: सो क्यों बिसरे दे जीवन दिया,
0: क्यों बिसरे जे अगन में राखे,
1: वर प्रसाद को बेला लाखे,
0: क्यों बिसरे जे विकते काटे,
1: जन्म जन्म का टूटा गांडे,
0: और पूरे तती है बुझाया,
1: प्रभु अपना नानक जन के आया,
0: जन शांत करो इहो काम,
1: आन त्याग जपो हर नाम,
0: सिमर सिमर सिमर सुख पावो,
1: आन जपो अवर नाम जपावो,
0: संसार
1: मेर पति तन हो सी शार।

0: नानक तुमरी शरण कर भगवान एक निमित हर के गुण गाए
1: राज भोग बढ़ियाई
0: हर के नाम की कथा मन पाई